0: अरसी माकी पोंडिका की मेसा मादेशा शेपेसी साकुंस मासों जो भी गेडिला जसु नेंबो शेजे पामासी देगों जेजु शेपी तासा देंसु शीयो येनायों युरें शोनी मासों जो भी गेडिले जांगा थेमु शीयो जेकेंदु युरें द चंडर पेपी जामें चे जासों पुरांगी चे जुजीनी जामें दां युरें ची न्यामडे तो काशे पाता शेले चितों गाजे संपी जोनी ममें नांडे थेंशे शाजिन येंशी देंदु
1: 你该来库那边为那次三年的一个对策在朱记年的三岁时汉坦年度给人力多人外也比有过执行红的是多见的四片也天天里服林晨也给了拿的利亚折卡拉卡瓜巴同其他面人巴同折巴莫尼和杂技得多折进来巴基囊同的下完马赛囊着点点荷兰的破也
2: 四片卷这一点夸给这一门那一中文学科拉千用你读些下这一些结巴是各位乐用年末
3: 是比些让长末
2: 各项总比年末能啊学巴拉